क्या बात है। सो एमी विर्क 30 अगस्त नू आज दिन रह गया 10-19 होगी और ऑलमोस्ट 10 दिन 11 दिन रह गया। तो तुसी तैयारियां वट लो, टिकट मास्टर डॉट सी तो टिकट ले लो या तुसी मेरे नाल तुसी राबता कर सकते हो ते या तुसी टिकट मास्टर डॉट सी या मैनू रेडियो उड़ान इंस्टाग्राम से डीएम कर दियो ताकि मैं थोड़ी जी बहुत सारी सेविंग करा सकाँ और टिकटों की जी वाधू फीस लगती वो थोड़ी बचा सकाँ। सो एमी विर्क नूं आपां 30 अगस्त नूं मानना आ, इंजॉय करना आ, बस थोनों नचाउण ते भंगड़े पाउण आ रहे हैं 30 अगस्त नूं टोरंटो दे विच ग्रेट थिएटर कनेडियन कसीनो विच इटोबिको दे विच महफलां लावांगे।

ब्यूटी इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउण के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लब रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cash and carry 2023@gmail.com ते।

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे सत्ते दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.

0: is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब ते अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो,
1: कॉल करो जे एंड गैरी नू
0: 905-459-5533
1: 905-459-5533 ते
0: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
2: सांझा विरसा मीडिया ले आए ने सेकंड एनुअल पिकनिक
3: संडे 23 अगस्त 11 AM टू 4 PM एट बल्ले बल्ले फार्म।
2: अनलिमिटेड फन मस्ती ते अपने आंदा होएगा साथ, भंगड़ा, गिद्दा, गेम्स, फूड स्टॉल्स, मेहंदी, सब कुछ रीजनेबल रेट्स ते।
3: तुसी अपनी डिशेस भी बना के ले आ सकते हो। पूरा पिकनिक वाला माहौल, पंजाब वालिया वाइब्स। आ जाओ फिर 23 अगस्त दिन एतवार सवेरे 11 बजे एट बल्ले बल्ले फार्म, 13219 ट्रिंकोजी रोड, कैलेडन।
2: जानकारी जा स्पॉन्सरशिप ले हरजीत जंजुआ नु कॉल करो 647-835-5294।
4: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-835-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: Du bist ein Job, Assas, du Assas, Hebbises, Nadet, Hose, Bises, Bole, Sony Hall, Sassier Karl.
1: मैं कह जी काफी टाइम तो पापा का दी रेनोवेशन नहीं करवाई ताही ता कर वधिया प्राइस ते सेल नहीं हुंदा
2: शम्मी पठल होरा नाल करो गल कर दी रेनोवेशन करा के लिस्ट कर देने वधिया रैकेट प्राइस ते सेल करवा के दंदे ने
1: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछानिया नाम मल्टी अवार्ड विनर ब्रोकर शम्मी पठल
2: वधिया रैकेट प्राइस ते कार सेल करवाउन ले कॉल करो 416-917-7763 यानी 416-917-776

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कोई भी कार वैन ट्रक का काम हो तो याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर, रिलायबल अफोर्डेबल ऑनेस्ट सर्विस, जिथे कि मैं भी गड्डियां नूं लैके जाना रिपेयर दे लई। रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी काम करदे आ। कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल, सेफ्टी सर्टिफिकेशन, ऊबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है, स्पेशलाइज करदे ने इलैक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च, स्टील्स एंड मेलनी। रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478

0: ड्रॉप कर देने मॉर्गेज वाले।
1: देख भाई जे तू लेना मॉर्गेज या लोन
2: ते तेरा काम 24 घंटे च करनगे मिस्टर संधू।
0: अच्छा जी।
3: आहो जी, नीड प्राइवेट मॉर्गेज एंड लोन्स, देन कॉल मिस्टर संधू एट 9056712000। नो क्वेश्चंस, नो क्रेडिट चेक, लोन अप्रूवल विद इन 24 आवर्स। नंबर रखो याद 905-671-2000, 9056712000, मिस्टर संधू।

0: पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9045412600।
1: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे हैं, कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे हैं, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती हैं। पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाने विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200।

0: Bangor Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545126 00.
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1, रेडियो आवाज।

हम पास से जानते रिवाज आकाशवाणी दे लहरवेच मैं हमदीप सिंह बेनीपाल आप सब दे नाल समय पेशन एयरपोर्ट ट्रैक 6 दे सामने जिथे माईवे लंघ रही है ड्रेज दो उथे फुरवान ईस्ट एंड वेस्ट बाउंड मूविंग वेल बट लिटिल स्लो और इस समय ग्रे स्काइज दे नाल हल्के हल्का सरूर जो बारिश का भी नज़र आ रहा हैगा ठंड और गर्मी का मिश्रण तो एक खूबसूरत सवेर वीरवार की सवेर दे विच मैं अमनदीप सिंह बेनीपाल तुहाडे नाल ठीक 10 बजे तक के साथ दे दौरान स्टूडियो नंबर ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-518-3200 ਓਨਲੀ ਟੈਕਸਟ 416-518-3200 32 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ

0: यहाँ पे तो कोई क्रेडिट चेक नहीं है, 0% पे लोन है और लाइक कोई भी इसमें हेराफेरी नहीं है, साफ काम साफ तरीके से 8 साल से कर रहे हैं।
1: वेरी गुड। ते लो जी बिल्कुल देख लो, इन्होंने एलिजिबिलिटी भी दस दी है, सो क्यों नहीं तुसी कोर्स करना, बिल्कुल करना। ते एदे नाल नाल सारांश ये भी दसो कि जिवें ना कई बार कोर्स एक खत्म हो जाता है ते फिर वो नेक्स्ट
0: हाँ
1: कोर्स
0: जी,
1: दे विच भी एनरोल हो सकते हैं, वो भी तुसी करवा देंगे हो?
0: हाँ जी, बड़े लोग आते हैं हमारे पास आपका शो सुन के और भी शो सुन के कि लाइक हमारा एक कोर्स खत्म होने वाला है, हमें सेकंड कोर्स करना है। तो यस, वो हमें ही रेचूट चूज करते हैं। क्यों? हमारी फीस बड़ी कम है, जेनुइन है, $200 फीस है हमारी काम होने के बाद, कोई कमीशन परसेंटेज नहीं है। और बाकी लाइक देर इज नो लाइक मतलब आप मान के चले 30% तो रिपीट क्लाइंट्स ही हमारे, जो मतलब आते हैं, पहले रिटेन हुए थे हमारे थ्रू, किसी और के थ्रू, शो सुन के हमारे पास आते हैं, सेकंड कोर्स हमसे ही चूज करते हैं क्योंकि तो लाइक हम बड़ा हमारा फीस कम है और हमारे आसान फुली ऑनलाइन कोर्स है इसलिए।
1: ठीक है। ते लो जी मैं नंबर एक बार फिर दे देनी है, नंबर तुसी ले लो 437-264-3175, 4372-6431-75 ते जड़ी गलबात है वो तुसी कर सकते हो सारांश दे नाल। सारांश थोड़ा जा होर दसो कि जिस तरह एजुकेशन पॉलिसी है हर 2 साल बाद चेंज हो जाती है ना?
0: तो इसमें अगस्त 2026 में चेंज आया है, लोन डबल हो गया है, और अब नेक्स्ट चेंज आएगा अगस्त 2028 से पहले। तो इसलिए अगर आप अभी एनरोल करते हैं 2 साल के कोर्स में, आपको जो 4 इंस्टॉलमेंट में $1.5 से $2 लाख आता है, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ रहे हैं फैमिली ऑफ फोर में, तो वो पूरा 1.5 लाख ही आएगा। लेकिन अगर आप 6 महीने बाद एनरोल करेंगे तो गवर्नमेंट ने अगर पॉलिसी चेंज कर दी अगस्त 2028 में, तो आपको शायद लोन हाफ हो जाए। तो दिस इज द बेस्ट टाइम आप एनरोल करें, 50,000 से 1,17,000 हासिल करें, साफ काम साफ तरीके से, कहीं भी उस पैसे को वर्तें, कोई कंडीशन रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, और बाकी लाइक कोई क्रेडिट चेक नहीं, कोई गारंटी, कोई पर्सनल गारंटी नहीं है।
1: ये भी दसो थोड़ा जा जिवें जे फैमिली ऑफ फोर है ना, ते किन्नी क
0: हाँ जी, फैमिली
1: फंडिंग फिर बन जाती उन्हां दी?
0: ऑफ फोर दी 1.5 लाख, फैमिली ऑफ फाइव दी 1,60,000 से 70,000 डॉलर, एंड लाइक हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ रहे हैं, और लाइक उनके बच्चे अगर 11 साल से छोटे हैं तो और ज्यादा फायदा है, कॉलेज की फीस बाहर ही बाहर से कवर हो जाती है। 1.5 लाख आया, 1,70,000 आया, और उतना ही वापस करना है।
1: जिहड़ा लोन लेंदे है ओदी पर्सनल गारंटी हुंदी कोई लेंदे है ओह कि नहीं?
0: नहीं जी, बैंक नहीं है यहाँ पे, गवर्नमेंट है। तो लाइक गवर्नमेंट आपको घर लेने के लिए लोन तो दे नहीं रही है, आपको पढ़ाई के लिए लोन दे रही है। तो आपकी ऐसा मैं कहता हूँ, गाड़ी के लोन पे गाड़ी उठा लेते हैं, घर के लोन पे घर उठा लेते हैं,
1: ठीक है।
0: लेकिन पढ़ाई के लोन पे अभी किताबें उठा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप स्किल डेवलप करें, फुली ऑनलाइन कोर्सेज, आसान से कोर्सेज घर के कंफर्ट से करें जी, 2 से 3 घंटे आराम से पास हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम ही नहीं है, आसान सी असाइनमेंट है, 2 से 3 घंटे क्लास लगाए, 50,000 से 1,70,000 का लोन हासिल करें, जो कि धरती पे कहीं नहीं मिलेगा 0% पे।
1: अच्छा कोर्सेज बताएंगे कौन कौन से हैं?
0: बिजनेस का कोर्स है 2 साल का, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, और उसमें फंडिंग डबल आती है और लोएस्ट फीस है, सबसे कम फीस भी उसी की है, इसलिए आपका टेक होम ज्यादा होता है उसमें। और लाइक देखिए जी, आपको ऐसा पैसा, अगर आप रिफाइनेंसिंग के चक्कर में है, पेपर बनवाएंगे, कमीशन देंगे, 2 नंबर का काम है, पकड़े भी जाएंगे, बैंकों ने लोन देने बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट, आप यहाँ से पैसे उठाएं, स्किल भी डेवलप करते साथ में आप, और आपके पास लोन दे जाता है इतना बढ़िया, $1.5 लाख तक का, तो इसलिए पीछे ना रहे। 0% का लोन कहाँ मिलेगा आपको, मुझे बताइए आप।
1: जदों इंटरस्ट जदों अपन ने जेड़ा लोन लिता वापस करना है ना, ते
0: हाँ जी,
1: इंटरस्ट किन्ना क पै जांदा?
0: हाँ जी, सो आप मान के चलें 2 साल का कोर्स है, 1.5 लाख का लोन आया, फैमिली ऑफ फोर को, हस्बैंड वाइफ दोनों आसान से कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन, तो अब उनकी जो 0% पे वो लोन, 1.5 साल, 1.5 लाख 0% पे 2 साल तक, 2.5 साल बाद जब पेमेंट स्टार्ट करते हैं तब उसका ब्याज 2.5% है पूरे साल का, मतलब $1,00,000 का ब्याज सिर्फ $2,500 पूरे साल का, और आप उसे 15 साल की किस्तों में वापस करते हैं, और मतलब इससे, और बाकी गारंटी बनने का नहीं है, अगर आपकी जॉब नहीं लगती तो आप लोन डेफर भी करा सकते हैं, बताइए कहाँ होगा ऐसा।
1: ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੌਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਤੇ ਅੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਕਈ ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ

0: यार इना इंश्योरेंसा ने ते तू कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
3: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं लक्की भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देखे गुआंढ भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
4: आज
5: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले ढिल्लों वीडियो कोल गुरबाणी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिए जी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
6: डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन
5: पर ढिल्लों वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जां ढिल्लों वीडियो.com होर कोई सेवा

0: Yes, September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा तो मैं नाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा, वे आ जा तो मैं नाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
4: हैसल फ्री मूविंग के लिए HK Movers।

0: is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Hello.
2: Hello. Kataria Tours and Travel.
3: Hanji, Kataria Tours and Travel.
2: India diyan tickets chahidiyan si.
3: Oh, India ki tusi jitthon marzi diyan tickets le lo. India kithe jana?
2: Char tickets Delhi diyan te do Amritsar diyan. Mil jangiyan?
3: Mil jangiyan. Bilkul mil jangiyan. Delhi, Mumbai, Amritsar. Eho ta saadi speciality hai. Bas dasso ki tickets kadon diyan chahidiyan ne. Te haan, special tour packages te honeymoon packages vi saade kol available ne.
2: Parosemand service te sab to vadhiya rates le ikko ikna. Kataria Tours and Travel. Booking le aaj hi call karo 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
4: 32-55-80
2: 98 गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
4: ओ काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
5: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 गोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
0: This is AM 530.

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा दिन अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के सुखे निजे साहब वतनों दूर प्रोग्राम तुहाडे लई पेश करनगे। 2 बजे तक साडियां जिहड़ियां फोन लाइन ने 905-799-0999-905-799-0999। अगे चल के CNE ग्राउंड दियां सानू 4 टिकटां एक फैमिली नूं असीं तोहफे वजों दवांगे, ऐसा गिफ्ट दवांगे। अज तों मेला शुरू है। जदों कहांगे उदों फोन कर लियो ते देखदे आं 1, 2, 3 नंबर किहड़े नंबर वालियां नूं टिकटां देणियां, उह तुहानूं टिकटां दे दांगे। छतरी छत रिपोर्ट कहती है अज सूरज सिंह 6:27 ते आया, 8:14 ते चले जाना। मामा चांसे 3:28 ते थोड़ी देर बाद आएगा ते रात नूं 11:55 ते जाएगा। अज मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, तापमान 28 डिग्री। कल नूं मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, तापमान 29 डिग्री। सैटरडे नूं 26 डिग्री तापमान, झक्खड़ झोले थंडरस्टॉर्म ते मीह नेरी सब कुछ आएगा। संडे नूं 26 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, मंडे नूं 25 डिग्री सूरज चमकदा रहेगा और ट्यूजडे नूं 24 डिग्री सूरज चमकदा रहेगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट वालों ने फैसला लिया कि ईरान नाल जो ट्रेड ने वह सारे खत्म कर देने हैं। और उसका सीधा तो सीधा रीजन है, ईरान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट ते अटैक किए जो अमेरिका ना रौला पिया। वह कहने तुम सारे बंब सुट्टदे हो तो असीं करिए थोड़े ना ट्रेड। नो नो नो नो नो नो। राती ब्लू जे बड़ी बहादुरी नाल खेडदे हुए 7-6 ते हार गए। जो डिफेंस आ चौथी इनिंग च उन्होंने 5 रन दिते। CNE दे असीं तुहानू बड़ी जल्दी दिंदे आ टिकटां, लेकिन उस तों पहलां दसीए बैंकॉक दी गल्ल है। एक टीनएजर सूटकेस विच लभिया जिन्हों स्टफ किया गया सीगा। 17 साल दी कुड़ी सी जिन्हों स्टफ किया गया सी और इहदी मौत साह घुटण दे कारण होई है।
1: एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी। एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप। 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, because we care।
2: क्विक ट्रक ल्यूब, आर यू रेडी?
0: टिक्का जंक्शन ले 647-429-4040। केटरिंग करानी है छोटी बड़े फंक्शन ले, नो प्रॉब्लम। 647-429-4040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम। 647-429-4040। तुसी इन्हारे बैंकुट हॉल या लॉज में छोटी बड़ी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम। 647-429-4040। 647-429-4040।
3: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street or call 905-791-4900.
0: Punjabi by nature, unna vallon Icon Event Space in Mississauga tuhade layi pesh kita janda hai. Bahut hi shandar elegant banquet hall hai. Tusi apne function nu ek bahut hi khoobsurat yaadgari mahol andar manao ji. Food number 1, sajavat number 1, location number 1. 100 to 1200 mehmana da swagat karnge Icon Event Space. 387 Dixie Road in Mississauga. Lucky Walia ya Monu Walia ji nu ghanti khadka lo. 905-965-2631. अपनी कम्युनिटी लई खुशखबरी, हीलैक्स वेलनेस फिजियो एंड रीहैब सेंटर खुल चुका है, जिथों तुसी फिजियोथेरेपी, मसाज थेरेपी, कायरोप्रैक्टर वर्गियां सेवावां प्रोफेशनल्स वल्लों दित्तियां जांदियां हन। इह तकरीबन सारियां इंश्योरेंस कंपनियां नाल खुद डील करदे ने। काउंसलिंग सर्विस भी अवेलेबल हन। हीलैक्स वेलनेस फिजियो रीहैब, 10930 गोरवे ड्राइव, यूनिट C-X1, गोरवे एंड कंट्री साइड दे कॉर्नर ते। ज्यादा जानकारी लई प्लीज कॉल 905-913-5256,
4: हटा के ए लैंडर ना करवानी है और इंटरेस्ट रेट ते भी बचत करनी है। कॉल 905-460-9099।
0: ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਮਰਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। 2155B ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਨੀਅਰ ਟੋਪ ਰੂਮ ਯੂਨਿਟ 32 905-460-9099 905-460-9099 4609099 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशन तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबी को। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।

0: एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: आज खुश तो बात हो गया था,
3: वो तो होना ही है जो तक नो वीडियो दा, नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे, ऐ नगदा बनदा ही है।
2: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
3: बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी, लाइव टीवी चैनल इंजॉय करन नू वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है। ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है, ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा,
4: क्या कह रहे हैं यहाँ पर?
3: ओ पाजी, सेलिब्रेशन 40 years इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313, जां tillobideo.com। होर कोई सेवा?
6: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, Nepal de vichon, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan tusi visa services Nepal de vichon, puri family vacation Upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200. Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of Earth.
7: ना करें, अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
8: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
9: What's up everybody, this is Jasmine Sandler, ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।

0: दोस्तों एक बार फिर वतनों दूर चाप सब का निघा स्वागत हैगा। और तुहानू पता है कि काफ़ी फैसटिवल भी हो रहे हैं, काफ़ी मेले हो रहे हैं, उन्होंने जानकारी भी तुम दे रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट भी साढ़े स्टूडियो च पहुंचे, इन्होंने भी तुम्हारी गलां बातें करावे। नंबर है 9057990999। स्पैक्स एक्सप्रैस तो लाइव प्रोग्राम अच चलना और राजन जी साढ़े नाल जुड़ गए हैं फोन से। जी आया सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी सारी श्रोता ने, तुम भी सुखी जी प्यार भरी सत
0: श्री अकाल जी।
1: श्रोता ने अखा का चेकअप करवाना डॉक्टर साढ़े को जी अज कल परसों तीनों दिन अवेलेबल ने। सुखी जी खास करके इस वे बैक टू स्कूल सेल चल रही है, बच्चिया ने एग्जाम कराना है तो तुम जरूर पहुंचो साढ़े को स्टोर देते, क्योंकि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम करते हैं, विजन चेक करते हैं, अखां दी हेल्थ चेक करते हैं, और असि जिहड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी दे इक्विपमेंट लैंदे ने इस टोपोग्राफी स्पैशल है। सो जो तुम बच्चों का एग्जाम कराना हुंदा है, ये मशीन जिहड़ी है जी ये पहले ही दस दिंदी सानू कि तुहाडा बच्चा उस कैटेगरी च आंदा है जिहदा नंबर हर साल वधना है, ते जे आंदा है ते असि उहनूं स्पैशली मायोपिया कंट्रोल ट्रीटमेंट वाले ग्लासिस बना के दिने आ जिहदे नाल उहनां दा नंबर उत्थे दा उत्थे रुक जांदा है ते वधदा नहीं। ते अजकल बच्चियां च होर एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी ड्राईनेस दी। सो बच्चे सारा दिन स्क्रीन दे उत्ते रहिंदे ने, स्क्रीन दे उत्ते रहिण करके उहनां नूं ड्राईनेस दे दी इशू, ते उहदे वास्ते जरूरी हुंदा कि तुसीं अपने ग्लासिस दे उत्ते ब्लू लाइट प्रोटेक्शन कोटिंग वाले ग्लासिस बनवाओ। सो जिहड़ी साडी बैक टू स्कूल स्पैशल सेल है जी, उह स्पैशल है भी जिन्ने भी स्रोते आके अपने बच्चों वास्ते ग्लासिस बनवा रहे ने, तुसीं अपने ग्लासिस दे उत्ते सिर्फ एंटी ग्लेयर कोटिंग बाय करनी है, ते नाल असीं तुहानूं ब्लू लाइट प्रोटेक्शन कोटिंग बिलकुल फ्री दे रहे हां। सो ब्लू लाइट प्रोटेक्शन कोटिंग एक्सपेंसिव हुंदी, इस करके कई स्रोते लै पाउंदे ने कई नहीं। सो इस करके असीं स्पैशली अपने वेंडर्स दे नाल नैगोशिएट कीता भी जिन्ने भी बच्चे आणगे अपनियां ग्लासेस बनवाणगे ते एंटी ग्लेयर कोटिंग जे बाय कर रहे ने ते ब्लू लाइट प्रोटेक्शन कोटिंग बिल्कुल फ्री दित्ती जावे, ते नाल दी नाल जिहड़ा तुसीं फ्रेम लैणे आ उहनां दे उत्ते भी बहुत वधिया डिस्काउंट है जी। जे तुसीं गुची दे फ्रेम लैणे, प्राडा दे, डॉल्ची गबाना दे, टॉम फोर्ड दे जां टिफनी दे, इह सारे दे सारे ब्रांडेड फ्रेम तुहानूं अज फ्लैट 30% ऑफ मिल रहे ने। रेबन दे फ्रेम लेना चाहते हो, अरमानी दे, माइकल कोर्स दे, कोच दे, या फिर केज स्पेड दे, टॉरी बर्ड्स दे, ते इस सारे दे सारे ब्रांडेड फ्रेम फ्लैट 50% ऑफ ने। ते जे तुसी टॉम हिल फिगर दे, वैलेंटीनो दे, फैंडी दे, या फिर कैलविन क्लाइन दे फ्रेम लेने ने, ते फ्लैट 75% ऑफ दिते जा रहे ने। सो इस सारियां डीलां लैण लई साडे स्रोते पहुंचन जी स्पैक्स एक्सप्रेस दे उत्ते, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन, फोर्टन एंड सील्स कह लो या कैनेडी एंड सील्स इंटरसेक्शन, वॉलमार्ट वाला प्लाजा। ते नंबर है जी साडा 905-460-8888। जेड़े साडे श्रोते अज अखां दा चेकअप करवाना चाहते ने उन्हां नूं दस्सो जी कि डॉक्टर अज साडी सैंडलवुड ते क्रेडिट व्यू वाली लोकेशन उत्ते 3 बजे तो लैके 6 बजे तक रहेंगे। जे अज नहीं आ सकते तो कल फ्राइडे नूं साडी 35 रेजोल्यूशन ड्राइव वाली लोकेशन उत्ते डॉक्टर शामी 4 बजे तो लैके 7 बजे तक होंगे। तो जे फ्राइडे भी नहीं आ सकते तो सैटरडे भी डॉक्टर तकरीबन 10 बजे तो लैके 2 बजे तक अवेलेबल ने। सो जिन्होंने भी अखा का चेकअप करवाना है जरूर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लैन ताकि उन्हों का टाइम सेव हो सके। 905-460-8888। ते जांदे जांदे एक स्पैशल डील जी, जिहड़ा साडा वैल्यू पैकेज है ये लैणा ना भुल्यो, $129 च असीं तुहानूं कंप्लीट पेयर प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस दा बना के दे रहे हैं, जिस सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम भी है ते नाल सिंगल विजन लेंसेज भी ने, ते $258 च असीं तुहानूं कंप्लीट पेयर प्रोग्रेसिव ग्लासेस दा बना के दे रहे हैं, और इहदे च बहुत वधिया कंपनी SLR कंपनी है। इस कंपनी दे हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज भी ने ते नाल ब्रांडेड फ्रेम भी है, ते अपनी ऐनकां दे उत्ते जिन्नियां मर्जी कोटिंग ऐड कराओ सारियां कोटिंगां फ्लैट 50% ऑफ ने। सो इदां दी बहुत डीलां ने जी, जरूर पहुंचो स्पैक्स एक्सप्रेस उत्ते। कोई भी जानकारी चाहिए तो एक नंबर 905-460-8888। ते जेडे साडे भैन भरा जिन्हां को बेनिफिट है ने दस दिए कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनियां नूं डायरेक्ट बुक करदे आ, चाहे तुहाडा एग्जाम होवे, तुहाडे प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होन या फिर प्रिस्क्रिप्शन सन ग्लासेस। सो नंबर 905-460-8888, 905-460-8888। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर, थैंक यू जी। और संजीव राजन जी स्पैक्स एक्सप्रेस तो, और जी काफी डील वधिया चल रही है उन्होंने तो तुसी जाके इस वीकेंड दे उत्ते फायदा ले सकते हो। सो किरण जी मेहमान आए अपने स्टूडियो, तुसी इंट्रोड्यूस करो
2: ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
0: ਨਹੀਂ
2: ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
0: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਲਮ ਜੀ ਦਿਵਰਾਜ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਬਟੂਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰੀਏ।
2: ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ।
0: ਹਾਂਜੀ

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: अपने
3: नजदीकी स्टोर ते जाओ या पिज्जा डिपो डॉट सीए ते ऑर्डर करो।
2: जे तुसी बिजनेस करना है ते फ्रेंचाइजी एट पिज्जा डिपो डॉट सीए ते आज ही अप्लाई करो। पिज्जा डिपो, स्वाद विच टॉप, टॉपिंग्स नॉनस्टॉप। किसी भी तरह के साइन या प्रिंटिंग के काम वास्ते जिस दे विच तुसी अपने बिजनेस कार्ड बनवाने हन, पोस्टर्स बनवाने हन, या फिर रियल स्टेट के साइंस बैनर्स दे वास्ते, कार ट्रक साइंस दे वास्ते, तुसी कॉल कर सकते हो प्रिंट जोन साइनरामा 1625 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट स्टील्स दे एडवांस दे उपर लोकेटेड हन ब्रैम्पटन दे विच। उन्हां दा फोन नंबर है 9054585956 9054589956।
4: यारों के साथ जशन या फैमिली के साथ करना हो जशन, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
5: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नायग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नायग्रा फॉल्स, कॉल 9053580864
4: 9053580864 Dhaba on the Falls.
6: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji 647-822-9607 647-822-9607.

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
3: इसे ले मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सम्राज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सम्राज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट ले हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे हुने ही सम्राज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: लखां दिलां दी धड़कन द सुपरस्टार एमी वेयर
6: मैं कित्थे बैठे आ करूं आओ जट खब्बी सीट ते बंदूक रख दे
5: Sound Live and Cellular Point present AmiWare live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo Ready Hojo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpradeshradio.com ਜਾਂ www.deshpradeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7